0: ब्रो
1: कहिले
0: मिल्दैछ कि ब्रो
2: राम्रोसँग ल मिलाइदिए
0: राम्रोसँग ल गाइदिए म चाहिँ

0: आपके जीवन जीना जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैव भरी लाए।
1: शांति र विकास को आधार सुन्दै हुनुहुन्छ सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाज 89.6 मेगाहर्ज।
2: यति बेला बिहानको 9 बज्यो।

0: न डराओ बाबू न डराओ, सांप का कुछ न करे थे, सांप कुछ नहीं करत है। अच्छा वो देखो वो अपन रास्ता चली गवा कुछ की तो, और सब सांप विषालु नहीं होते है ना।
1: विषालु है कि नहीं, कैसा चिन्ह है अम्मा?
0: हाँ बाबू, नेपाल में मिले वाले विषालु सांप के बारे में सुनो। एक होते करेंट जोन प्राय रात के समय में घर भीतर हल सकत है, एक दशक बाद ना ही पिरा सकत है, लेकिन दशक बाद शरीर का भाग न चले मेर से, सांस लिए कठिन हुए मेर से पक्षघात हो सकत है। और ऐसे होते हैं गोहुअन अर्थात फेटारा जोन बहुत रिसहा मेर के होते हैं और फाड़ बनावत है। गोहुअन सांप दिन या रात दोनों ओकत दिखाते हैं, और प्राय सवेरे संध्या के दिखाए वाले एक दशक बाद पक्षघात हो सकत है।
1: अच्छा,
0: और दूसर होते हैं हरियो जात के सांप, एक दशक बाद दस लिहा भाग फूल जात है और बहुत पिरात है, खून पातर हो के रक्त श्राव हो सकत है। वही मेरे से हमरन के देश की तराई के सब भूभाग में मिले वाले गंडाइस जौने के ऊपर बाघ के जिस बुट्टा होते है, एक दशाई के बीमारियाँ कम मात्रा में मिलत है, लेकिन एकर दशाई एकदम खतरनाक होत है।
2: बसायाम और बाली काटे समय में सांप के कटाई अथवा दशाई के घटना सब बहुते होत है। बाढ़ और प्राकृतिक प्रकोप सब के कारण सांप के वासस्थान नष्ट होत के सांप दशाई के घटना सब अधिक होत मिलत है।
3: ढेर जैसा सांप के दशाई हानिकारक नहीं होते, तब वो सांप दसिल तो तुरंत निर्वय के उपचार केंद्र में चल जाए चाहिए।
2: विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे और नकचेरे के उपचार केंद्र कहाँ है कह के पता लगावे आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाए के आवश्यक जानकारी ले सका जात है।
4: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
5: युनाइटेड अस्पताल बाढ़गंगा साथ ठाकुरापुर कपिल वस्तुमा बिरामीहरूका लागि थप नयाँ सुविधाहरू।
6: कंसल्टेंट फिजिशियन डाक्टर गोविंद रावत, छाती तथा श्वास प्रश्वास संबंधी समस्या, मुटु रोग, मृगौला रोग, पेट र आन्द्रा को समस्या, कलेजो, थायराइड र मधुमेह सहित का रोगहरूको पूर्ण परामर्श र उपचार।
5: हाड़ जोड़नी नसा तथा बाथ रोग विशेषज्ञ डाक्टर समीर खान द्वारा हाड़ जोड़नी संबंधी समस्या, हड्डी ढाँचिएको, रजहरू राख्ने निकाल्ने, नसा च्यापिएको लगायत बाथ रोग विशेषज्ञ सेवा बिहान 10 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन परामर्श तथा उपचार सेवा उपलब्ध छ।
7: वरिष्ठ जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डाक्टर सन्तोष पौडेलद्वारा यस युनाइटेड अस्पतालमा विशेषज्ञ शल्य चिकित्सा तथा परामर्श सेवा उपलब्ध रहेको छ। पित्त थैलीमा पत्थरी, हर्निया, एपेन्डिक्स आदिको दूरबीन प्रविधि द्वारा अपरेशन, स्तनमा गाँठागुठी, थोका, घाउ, पाइल्स तथा अन्य शल्यक्रिया सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म विशेषज्ञ डाक्टरसँग परामर्श तथा आवश्यक उपचार सेवा लिन सक्नुहुनेछ।
8: वरिष्ठ प्रसूति तथा महिला रोग विशेषज्ञ ल्याप्रोस्कोपी सर्जन डाक्टर सन्देश आचार्य द्वारा गर्भवती महिलाको नियमित जाँच, डेलिभरी तथा शल्यक्रिया, पाठ्यगत सम्बन्धी सम्पूर्ण शल्यक्रिया, दूरबीन प्रविधि द्वारा अपरेशन, परिवार नियोजन तथा बन्ध्याकरण सेवा, महिनावारी गडबडी, सदो पेट दुख्ने तथा फोहोर पानी बग्ने समस्याको उपचार, बाजोपन, पाठ्यघरको क्यान्सरको जाँच तथा परामर्श।
5: वरिष्ठ एनोस्थेसियोलोजिस्ट डाक्टर सुमन श्रेष्ठ द्वारा क्रिटिकल केयर परामर्श तथा उपचार सेवा।
7: अन्य ओपीडी सेवा शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन बिहान 10 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म सुन्नुहोस् त मेडिकल अफिसर डाक्टर योगेन्द्र थापा र डाक्टर रोशन कुमार यादव द्वारा 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा उपलब्ध छ।
6: युनाइटेड अस्पताल बाढगंगा 4 ठाकुरापुर कपिल वस्तु, सम्पर्क 076-550-200, मोबाइल नम्बर 98-575-158।
5: अब ढुक्क हुनुहोस्, विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह लिनुहोस् युनाइटेड अस्पतालमै।
0: यो
9: युनाइटेड हस्पिटल यही होइन र भएको कहाँनिर सरे छ र बिरामी भएर बस्न खाना छैन हस्पिटल भेटिने होइन
10: ए दिदीले युनाइटेड हस्पिटल खोज्दै आउनु भएको यो त सरेर आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवनमा गएको छ नि ल चार नम्बर चोकबाट अटो चढ्नुहोस् त्यसपछि तौलियावा रोड हुँदै 2 किलोमिटर अगाडि जानुहोस् त्यहाँनिर ठुलो बोर्डमा युनाइटेड नेसनल हस्पिटल लेखिएको छ त्यहाँ जानुभयो भने तपाईँको समस्याको समाधान भइहाल्छ नि अनि दिदी युनाइटेड पहिलाको जस्तो छैन नि अहिले त धेरै सुविधा सम्पन्न भएको छ तपाईँलाई जे समस्या भयो त्यसको विशेषज्ञ डाक्टरबाट उपचार हुने भएकाले कुनै चिन्तै लिन पर्दैन
11: हजुर विशेषज्ञ डाक्टरबाट चेक जाँच हुने जिल्लाकै सुविधा सम्पन्न एकमात्र अस्पताल युनाइटेड नेशनल हस्पिटल प्रणाली बारगुङका चार ठाकुरापुर र झुङ्गाको बीचमा यहाँ विशेषज्ञ डाक्टर सहित दैनिक ओपिडी सेवा पेट छाती मुटु तथा सुगर रोग विशेषज्ञ सेवा हाड जोड्ने सम्बन्धी हड्डी भाँचिएको रडहरू राख्ने निकाल्ने महिला तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ सेवा मेजर अपरेशनहरू एपेन्डिसाइटिस पाठेघर फाल्ने हर्निया पित्त थैलीको ढुङ्गा निकाल्ने चिरेर बच्चा निकाल्ने लगायतका साना ठुला अपरेशन
10: 24 घण्टा सेवा उपलब्ध छ
11: होला 100 रुपियाँमै विशेषज्ञ टिकट
10: विस्तृत जानकारीको लागि युनाइटेड नेसनल हस्पिटल प्रणाली फोन 076-550-200
7: होइन ए दाई कता हो लखर लखर बाइक डोराउँदै
12: कहाँ हुनु र भाइ यो बाइक बनाउँदा बनाउँदा हैरान परे म त आज पनि अफिस जाने बेला बिग्रियो नयाँ किनौ भने पुरै पैसा छैन
7: चिन्ता लिनु पर्दैन बिग्रेको बनाउन होस् या नयाँ बाइक लिन केदारनाथ अटोमोबाइल्स प्रणाली छँदैछ नि त्यहाँ त जेनुन पार्ट्सको प्रयोग गरी अनुभवी तथा दक्ष प्राविधिकद्वारा बाइक तथा स्कुटर मर्मतको सुविधा छ अनि नयाँ किन्न पैसा छैन चिन्ता लिनु पर्दैन नागरिकताको भरमा 0% सेवा शुल्क सहित 5 वर्षसम्मको सजिलो फाइनेन्सको सुविधा पनि उपलब्ध छ
13: जेनुन नै ठिक छ जेनुन नै ठिक छ
14: हजुर जुनसुकै पुरानो बाइक लिएर आउनुहोस् बजाजको नयाँ डोमिनार पल्सर प्लाटिना एनएस बाइक वा चेतक स्कुटर चढेर जानुहोस्
7: अनि सुन्नुहोस् त यहाँ हरेक दिन एक्सचेन्जको सुविधा पनि उपलब्ध छ
13: पुरानो बाइक मर्मत गर्न होस् या नयाँ बाइक खरिद गर्न सम्झनै पर्ने ठाउँ
7: बजाजको आधिकारिक विक्रेता केदारनाथ अटोमोबाइल्स प्रणाली बाढगंगा एक बैरिया कपिल वस्तु
14: थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 98570-50-243 98026-25-243 र 98013-51-417
15: भगवान यो टोयलेट भुरेर पानी पनि माथि आउन लागिसक्यो कति झन्झट भएको कला बोलाउने होला
16: ए दाई ढुकाउनुहोस् यस्तो बेला त अनुप किसान सेनेटरी बोलाउने हो 5 मिनटमै आउँछन् सेफ्टी ट्याङ्की र रिङ सफा गरेर गइहाल्छन्
14: हजुर टोयलेट सफा गराउनु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस् हामी 5 मिनटमै टोयलेटको सेफ्टी ट्याङ्की र रिङ खाली गर्नेछौँ
7: अनि सुन्नुहोस् त हामी कहाँ निर्माण कार्यका लागि चाहिने गिट्टी र ढुङ्गा पाइनुका साथै निर्माण कार्यका लागि चाहिने सिँचाइको सुविधा पनि रहेको छ है
16: सम्पर्क अनुप किसान सेनेटरी बारगङ्गा 1 मन्द्रेली टोल बठनपुर कपिल वस्तु
7: प्रोप्राइटर नोने थारू
14: सम्पर्क नम्बर 98144-49-450 र 98376-33-393

प्रकार को रसायन केमिकल न मिसाइए, शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्य श्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को तेल स्वास्थ्य श्री रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का प्रीमियम उत्पादन।

0: खोई तो कहाँ गए जुमले हरले जुमले नहीं पाए सं लहर तो मौसके का
1: इस दाय कितने साल तक गया था
2: बाय
0: ना करो
1: पटना ला जानी ना देना अपने बातियों गया खत्म हुआ
0: उतारा

0: प्रकार को रसायन केमिकल न मिसाइए शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्य श्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को तेल स्वास्थ्य श्री
1: रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का प्रीमियम उत्पादन